0: वापस आएगा, वो भी इंतहाई तेजी के साथ, और इंशाल्लाह फिर मरते दम तक आपके बाल गिरेंगे नहीं। ये ऑयल सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दफा आप सर पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के करम से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल, खालस और एक नंबर है। इसमें अल्लाह के करम से किसी किस्म का कोई झूठ और गलत बयानी बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
1: Isna Formula Beauty Cream د کوالټي او د خلانو په لګورز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنا د زیاتو مرسرات کچیر ځان خيسته کول غواړي بالکل جی اغه هم صرف صرف په ورځو کې ازنا پرمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کې ټیسټ کې شوی د هر کیمیکل او استرایک نا مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبرو منه او د ځان د پار راوړې ازنا پرمولا بیوٹی کریم

रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वाश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वाश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वाश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर सकते हैं।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: ये तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

चेयरमैन ऑफ रेडियो 88.4 वाईची चिरियो शेर खोरा तो वो आया कहना डेर मेहरबानी वही शीरुन से के शीरुन को आगे सड़े हुए छे सोक अशिक हुई नो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मंग हो अशिकान नहीं कहना हाँ और कुयुम नो चाहता सपत लगी हाँ और बाकी चिकम दोनों बस मरा दुनिया था हाँ होता शेर याद को सब और कोई शेर चिकम दोनों पति दिमाग लग बोझ जो माँ जगह दिमाग में लगों देखी कमजोरी शिव वाजी जनाजा में दरनौड़ी जाना नाराशा और पमा खौरे अड़वी जाना नाराशा जनाजे में दरनौड़ी जाना नाराशा पमा खौरे अड़वी जाना नाराशा केलीवाल में टोल राटोल शोल अदरीता मालकबर जोड़वी जाना नाराशा आखिर ए दिदन में उकड़ ए जाना ना आखिर ए दिदन में उकड़ ए जाना ना नूर में मख ब्या मबल अड़वी जाना नाराशा चात मीना यो जन्नत शी लकत चात जोड़ यो मुसीबत शी लकत चात मीना यो जन्नत शी लकत चात जोड़ यो मुसीबत शी लकत सोक अख्तब जलालत शी लकत सोक पमीने के बाचा शी लकत सोक पसरोस्तर को जड़ी की लकत दचार टूल उमर खंदा शी लकत عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان دے پا دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹس سر ملائی ہوئی گی اور وٹامن سی سیرم اس رہو ملائی ہوئی گی ہاں وٹامن سی سیرم خاص ڈائریکٹ پر سکن باندھ لگے ہوئے لگوں تک مساج کے ہوئے اور بے پردی سبائی وین صاحب اب اخبل جانتا اپا اینے کے چکم دے کنا کنا کنا کنا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 DA Khan, Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. तीन स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की। कि जनाब ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की। सामने ग्राम एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए दिन के साथ, आज है 9 मई 2026, 4 बज चुके हैं जनाब।

चार बजते ही आप सभी अपने अपने अपने रेडियो स्टेशन के ऊपर चाय के इस वक्फे में, चाय के इस वक्त में टी टाइम प्रोग्राम सुनते हैं खलील ताबे शाहवान के साथ। एक दफा फिर से आप लोगों के साथ मौजूद हैं जनाब। हफ्ते के दिन है, सैटरडे है। कैसे हैं आप सभी लोग जनाब? उम्मीद मैं यही करूंगा कि तमाम मेरे तमाम चाहने वाले, तमाम दोस्त, तमाम फ्रेंड्स, तमाम लिसनर, तमाम यूजर बिल्कुल जी खैरियत और अफियत के साथ होंगे और आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा जनाब। आज गर्मी की शिद्दत जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हुई है जनाब। आज आपने जब जो है पानी इस्तेमाल किया होगा टैंकी का, तो मेरे ख्याल में आपको गर्म लगा होगा आम दिनों की निस्बत है। तो जनाब आज टेम्परेचर जो है वो आम दिनों से हटकर और यूं समझ लीजिए कि जनाब सही वाली गर्मियों का जो है आगाज हुआ चाहता है। लेकिन चाय को भला कौन छोड़ता है जनाब। जितनी भी गर्मी हो जाए जनाब, ये वाला जो वक्त होता है यानी कि 3 से लेकर 5 या फिर 4 से 5 ये वक्त, इसमें चाय तो जरूर पी जाती है। और क्योंकि जनाब कहते हैं कि चाय ही तो है जो आपको बेदार करती है जनाब, जो आपको नींद से उठाती है, जो आपको एक्टिव कर देती है। तो जनाब चाय के एक कप के साथ, चाय के एक प्याले के साथ मेरी तरह, क्योंकि मेरी चाय बिल्कुल जी मेरे टेबल के ऊपर आ चुकी है, लैपटॉप के बिल्कुल जी साथ में पड़ी हुई है और एक घूंट में ले चुका हूँ। लेकिन बहुत गर्म चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ। थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बिल्कुल भी ठंडी ना हो लेकिन बिल्कुल भी गर्म ना हो। तो जनाब म्याना रवि के साथ जनाब, हाँ जनाब म्याना रवि वाली चाय जो है वो मैं नोश फरमाता हूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, लेकिन आप साथ साथ में अपनी चाय को भी एंजॉय करेंगे।

जी जनाब, चाय मेरी बिल्कुल जी साथ साथ में अब बिल्कुल जी ठंडी होने वाली है, लेकिन एक कॉल मैंने ले ली थी, कॉल बिल्कुल जी ड्रॉप हो गई है इस वक्त। तो जनाब कॉल कर सकते हैं आप हमें, हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, इसको सेव कर लें अपने मोबाइल के अंदर, 03449363366 हमारा टेलीनॉर का नंबर, और 03137985454 जो है हमारा जोंग का नंबर है, जिसके ऊपर आप कॉल और इन दोनों के ऊपर आप कॉल और एसएमएस कर सकते हैं।

0: जी जनाब, ये प्रोडक्ट हमारी जो ग्लूटावाइट हमने आपको बोली है, आपके भाई डेर इस्माइल खान में तो हर जगह मौजूद है, पहाड़पुर में भी हर जगह मौजूद है, लेकिन न्यू एरिया हमारा जो ओपन हुआ है टांक, उसमें कहाँ कहाँ मौजूद है? तो सदाम प्लाजा में मंसूर जनरल स्टोर है जनाब, सदाम प्लाजा टांक, यहाँ पर हमारी एक ऑफर चल रही है भाई, उन लोगों के लिए जो केसन के ऊपर बिस्मिल्लाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये ऑफर है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है और उनका मौका दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अब्दुल हादी हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी टेलनॉर से करते हैं, कभी इससे करते हैं, तो वो मिक्सअप हो रही हैं चीजें। अच्छा जनाब, अभी इनको हम जी जनाब इनकी कॉल ले ली, पकड़ लिया बल्कि हादी को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो अब्दुल हादी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। तुसा सुनो, चंगे वदे वे?
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, सा चंगे वदे वे।
0: प्रोग्राम सुन दे पे वे? हेलो
1: जी, मैं के सुन दे पे, बड़ा मजा करे ना।
0: अच्छा, शुरू कुल सुन दे आंदे वे कि हुने आके ट्यून की तवे?
1: ना ना सर, शुरू सुन दे आने,
0: शुरू कुल सुन दे वे, तो थक तनी वे वेंदे, बोर तनी वे थिंदे, सही सीधे से मैं को कानी दे सु के खैर
1: है। तेरे गालियों को कोई बोर थी है?
0: अच्छा नहीं थी ना?
1: नहीं नहीं
0: चलो अच्छी गल। आज एक नवी कहानी है सर, तो अलग सटी है सही कि ऐसा भी ग्लूटा थियोन ना पहले सुना है तुसा के नहीं सुना? सुना ना कि नवी सुना?
1: नने सुना नहीं भाई,
0: नवी नवी गालियां तो को दसे ने, देख गई में आरजी मिल सी तो को, कोई में कंपनी मिल सी कना जेरे नवी नवी गाली हर रोज तो को दसे?
1: ना ऐसा कोई यार जो को मिल नवी सी ते
0: है ना,
1: चलो
0: ठीक, छुड़े कमाल से। ओके जनाब, ये थे हमारे साथ अब्दुल हादी, और कॉल बीच में ना आ गई तो फिर तो भैया जी।

0: जी जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है और उन्हें मौका देते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जनाब कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा अपना।
1: असद
0: फ्रॉम टांग आ चुके हैं सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: जी
0: अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का शुक्र है। आप हमारे
1: साथ अभी के साथ ही कुछ कब्ज की बात कर रहा था, मुझे खुद भी कब्ज की तकलीफ है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करूं?
0: ये हमारा प्रोडक्ट है, फक्की है, उसका नाम है वेट कम पेट कम।
1: वेट कम
0: पेट कम, ये बेसिकली हमने ये हमने वजन कम करने के लिए बनाई है, वेट लॉस फार्मूला है। ठीक है जी,
1: कब्ज भी ठीक हो जाता है
0: इससे? इससे बहुत सारे मसले ठीक होंगे, इससे कब्ज भी ठीक होगी, इससे आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, इसके आप जिसको खाएंगे तो आप समझ आ जाएगा कितनी जबरदस्त चीज है।
1: अच्छा, वेट कम पेट कम।
0: हाँ, ये वेट कम पेट कम, छोटी 400 रुपए की है, बड़ी 700 रुपए की मिलेगी। आप खरीदिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फाका होगा आपको।
1: मेहरबानी, जजाकल्लाह।
0: बस ये आप मंसूर जनरल स्टोर के ऊपर जाएंगे या किसी भी स्टोर के ऊपर जाए तो वहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा।
1: ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी,
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जनाब असद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप लोगों के मैसेजेस को जो है हम शामिल करते हैं, फिर कॉल आखिर के अंदर ले लेंगे। ठीक है जनाब, थोड़ा सा आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं। तो भाई ये हमारी प्रोडक्ट जो है केसन वेट कम पेट कम, चूंकि इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं तो भाई इसके बड़े फायदे हैं। आप जैसे ये हमने प्रोडक्ट बनाई है वजन कम करने के लिए, लेकिन इतने हैरान कुन हमें लोग फीडबैक देते हैं, जैसे कि आपके सामने अब जो है मास्टर साहब कह रहे थे कि भाई मेरा कब्ज का बहुत बड़ा मसला था, वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके से किसी को अगर गैस का मसला है, बदहजमी का मसला है, तो ये फक्की बेसिकली तो वज़न कम करने के लिए, लेकिन इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो आपके मैदे को बिल्कुल सेट कर देती हैं, आपका निज़ाम बिल्कुल जी सेट कर देती हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट कम पेट कम के नाम से हमारी ये प्रोडक्ट मौजूद है। और देखते हैं कौन है जी हमारे साथ, अब्दुल हादी। और जी जनाब, साथ में शायरी भी भेजते हैं, गरज शहबाज से हमारे साथ मौजूद है जी, मौजूद जी। और कौन है हमारे साथ, हमारा साथ दे रही हैं जनाब जनाब जनाब, अस्सलाम वालेकुम केटीए, क्या हाल है आपका और आपके सब लिसनर कैसे हैं, और गर्मी किस हद को पहुंची है आपके वहाँ? मेरा नाम तो सुना ही होगा, खैर नहीं सुना तो बता देती हूँ। अच्छा जी, अनीसा या अनसा हूँ टांग से, शो अच्छा है और आवाज मुझसे तो कम है। ये तो आप आवाज जब सुनाएंगे तो पता चलेगा कि आवाज किसकी आवाज कितनी मीठी है, कितनी आप अपनी तरफ से कह रही है ना कि आपकी आवाज से मेरी आवाज कम है, मगर अच्छी है। और महानूर, तुम बार बार कह रही थी तुम्हें मैसेज करो शो में, अब कर दिया और तुमने मुझे वेलकम ही नहीं किया, और कहते हैं कि वेलकम करना तो बनता है, चलो आप मुझे वेलकम करो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी और फिर मैसेज नहीं करूंगी। कहते हैं ये जनाब टांग से, आपकी टांग से, अब ये अनसा है या अनीसा है? ठीक है जनाब, ये क्लियर करेंगे। कल मैंने इनको अनीसा कहा था, और इनकी फ्रेंड होती है डेरा में उर्दू वाली महानूर, जो 91 की बहुत बड़ी FM है, और किस ग्रुप का हिस्सा होती थी एक वक्त में, अनारी ग्रुप का। जी जनाब, थैंक यू जी। अनीसा हमारे साथ मौजूद है, प्रोडक्ट कब ले रही हो लड़की तुम? टांग के अंदर हमने आपके टांग को अपने प्रोडक्ट से भर दिया है, और सदाम प्लाजा, सदर प्लाजा, अफसर खान प्लाजा, अलबदर मार्केट, यहाँ पर जितनी दुकानें हैं भाई केसन से भरी हुई हैं। ठीक है जनाब, और स्पेशली मैं यकीन करें अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपकी दो क्रीमें हैं तो हम कौन से इस्तेमाल करें, तो मैं पहले पूछता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है। ठीक है जनाब, जब कोई बोलता है कि मेरी उम्र 18 से 17 से 15 से 20 साल के दरमियान है, तो मैं बोलता हूँ आप ग्लूटावाइट क्रीम इस्तेमाल करो। अगर कोई बोलता है कि मेरी उम्र शादीशुदा हूँ, 25 साल है, 28 साल है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप केसन की ज़ाफ़रानी क्रीम इस्तेमाल करें। अच्छा, ये मैं किसी दिन आपको डीपली इसके हवाले से ब्रीफ करूँगा क्यों इस तरह हम कहते हैं आप लोगों को, फार्मुलेशन का फ़र्क होता है। ठीक है जनाब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जनाब एक लड़की है, एक फीमेल है कि जिनकी जिनको सिर्फ ऐसी क्रीम चाहिए जो स्किन को गोरा करे, उसकी स्किन के ऊपर छाइयाँ नहीं हैं। ठीक है जनाब, अब अगर वो क्रीम वो वाली इस्तेमाल करेगी जो छाइयों को ख़त्म करने वाली है, इसका मतलब है जो छाइयों को ख़त्म करने वाली क्रीम होती है ना, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है जनाब, यानी कि बहुत जल्दी काम करने वाले होते हैं, तेज होते हैं, सिंपल वर्ड्स में वो तेज फार्मूला होता है जो छाइयों को खत्म करने वाला होता है। अब एक आम फीमेल जो है जिसको छाइयों का मसला नहीं है, उसने स्किन को सिर्फ ब्राइट करना है, गोरा करना है, तो वो छाइयों वाली क्रीम क्यों इस्तेमाल करें? अगर वो करेगी तो उसके लिए तो नुकसान है उसकी स्किन, क्योंकि वो तेज फार्मूला है, उसकी स्किन तो फिर खराब हो सकती है, ठीक है ना। तो उसे चाहिए कि जना वो वाली क्रीम इस्तेमाल करे जो विदाउट छाइयों के, यानी कि उसकी फार्मुलेशन टोटली मुख्तलिफ होती है। अब ये जो हमारी ग्लूटावाइड क्रीम है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म का फार्मूला है, ठीक है जनाब, और इसे कम उम्र के लड़कियां इस्तेमाल करें, बिगिनर्स इस्तेमाल करें, जो नया नई क्रीम को इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो अनसा को या अनीसा को पहले क्लियर नहीं हो रहा, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई केसन की ग्लूटावाइट शुरू करो, नहीं तो फिर अपनी दोस्त मानूर से पूछो, मानूर क्या यूज कर रही है।

0: खींच रहा मानूर का मैसेज भी मेरे प्यारी सी दोस्त के लिए। एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा फूल है, यानी कि वो अनसा के बारे में कह रही है, गुलाब जैसा है, मेरी दोस्ती की याद इस पे खत्म है जमीन पे, अच्छा खत्म है जमीन पे रहता है, मगर चांद जैसा है मेरी दोस्ती के नसीब। अब मुझ सब दोस्तों से अजीज आप हैं। अस्सलाम वालेकुम केटीए, कैसी हो? उर्दू वाली मानूर हूँ, वेलकम, और बहुत सारे फूलों से वेलकम करती हूँ अनीसा को। ये शेर अनीसा के लिए था। अनीसा जानी कैसा लगा तुमको शेर का जो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, उसे कैसे समझ आई होगी कि जे मानूर उसको क्या डेडिकेट कर रही है। ठीक है जी ना, एनी हो, असल में आपकी उर्दू जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है केसर ज़फ़रानी करीम की तरह। सब सुनने वालों को और अनीसा को कहती हैं कि जनाब मेरा ढेर सर सलाम हो गया। ठीक है जनाब, खान जमान जंजुआ हाफिज अब्बास से खलील भाई, मेरी भतीजी है जिसको छींके बहुत आती है, कोई इलाज बताए तो छींके बहुत आती है, तो इट्स मीन कि उन्हें एलर्जी का मसला है। तो कोशिश करें घर के अंदर कोई बिल्ली कुत्ता वगैरह है तो उसको साइड के ऊपर करें, क्योंकि उसके उनके बालों के अंदर जो है कुछ जरासीम होते हैं जो छींके दिलवाते हैं। या घर के अंदर फूल वगैरह हैं, ठीक है जनाब, क्यारियां वगैरह हैं, या ऐसे फूल हैं जो उड़ते हैं, जिनके पोलन्स उड़ते हैं, सूरजमक्खी हो गया, गुलाब का फूल हो गया, चमेली हो गया, उनके बीच में जो बीज पड़े होते हैं पोलन्स बोलते हैं, वो जब हवा में उड़ते हैं तो उससे भी एलर्जी जो है कॉज होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, धूल मिट्टी इससे आप दूर रखें, झाड़ू वगैरह करते हैं तो उसे कहें कि मास्क लगाएं, फूलों के करीब ना जाएं। ठीक है जनाब, कोई पालतू जानवर वगैरह रखे हुए हैं तो उनके करीब ना जाएं। तो ये रीजन होते हैं जनाब छींके आने के और एलर्जी बढ़ने के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से अरूबा वफा फातिमा को सलाम। भाई मेरी बहन की उम्र 12 साल है, वो बहुत मोटी है और उसे भूख भी बहुत लगती है, इलाज करवाया है आराम नहीं आया, तो उसे वेट कम पेट कम फकी दे सकते हैं? इरम शहजादी, बिल्कुल जी, ऐसी लड़कियों के लिए तो हमने बनाई है जो हर वक्त ईटिंग करती रहती है, हर वक्त खाती रहती हैं, भूख उनके सर के ऊपर सवार रहती है। तो केसन की जो वेट कम पेट कम हर्बल फकी है, आप उसे यूज करवाएं, ठीक है जनाब, और वजन करवा के यूज करवाइएगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि 15 दिन के अंदर उनका कितना वेट जो है कम हुआ है। इरम शहजादी पहाड़पुर से हमारे साथ मौजूद थी। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? और अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? शबरा चाचा को सलाम, और मेरा काम मेरा कलाम कहते हैं कि काइंडली प्ले कर दें और ये हमारे साथ आलिया बखड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर खलील भाई, तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत सलाम, शबीर अहमद भाई और नियाज हुसैन शाह अंजम को स्पेशल सलाम। आपका बुगाम कंपनी लिसनर्स और आवाज भी बेमिसाल, जितनी तारीफ की जाए, यानी के कहते हैं कि आपका प्रोग्राम, आपकी कंपनी, आपके लिसनर्स और आपकी आवाज बेमिसाल है, जितनी तारीफ की जाए कम है, चाला नजर ना लगे। नजर हसन फ्रॉम कच्ची काठगढ़ से हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और क्या कह रहे थे, दुआएं दे रहे थे, और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि भी ना सिर्फ आप अच्छे हैं, आपके लिसनर्स भी बड़े अच्छे हैं जनाब। केसन नेचुरल पाकिस्तान खूबसूरती बांट रही है, शिफा बांट रही है, और वो भी बहुत कम पैसों में। हाँ जनाब, बहुत ही कम पैसों में, और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, चाहे वो सेहत के हैं, चाहे हाजमे का मसला है, मोटापे का मसला है, या फिर स्किन की खराबी का मसला है। कल भी मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा था कि गर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा इशू जो होता है पसीने के साथ, आपकी स्किन के अंदर जो है जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो हीट की वजह से सेबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऑयल बहुत ज्यादा पैदा होता है जो कि दाने बनने का सबब बनता है। तो केसन को पिंपल का इस्तेमाल कीजिएगा। राजा गफूर हमारे साथ आए थे, उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। तो इन दिनों के अंदर जो गर्मी का महीने है ना भाई, इनके अंदर जिन लोगों की स्किन ऑयली है भाई, अगर उनको अपनी स्किन से प्यार है, ठीक है, अपनी त्वचा से प्यार है, तो फिर वो केसन का गो पिंपल अपने पास रखें। केसन गो पिंपल जो फेस वॉश है या सोप है, ये दोनों ऑयल कंट्रोल थेरेपीज हैं, ठीक है जनाब, और मेडिकेटेड प्लस नेचुरल कॉम्बिनेशन है हमारा। बहुत ज़्यादा ये आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोगों को दाने निकलते हैं, बम्प्स निकलते हैं, छोटे छोटे पीत दाने जिसको हम कहते हैं, आप गो पिंपल यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोगों के, लड़कियों के माथे भरे पड़े होते हैं। और मुझे याद है, मैं टांग से मुखातिब हूँ, आपके टांग से एक दो फीमेल हमसे ऑनलाइन मंगवाती हैं, तो उनको हमने ये गो पिंपल भेजे था, उनका यही मसला था, बम्स का माथे के ऊपर बहुत ज्यादा जो है छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, शायद मौसम की टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होता है या फिर जो है पानी की वजह होती है। तो केसन की ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली गो पिंपल, आप याद रखिएगा, चाहे डेरा में लोग हमें सुन रहे हैं, पहाड़पुर में या फिर टांग के अंदर, फेस वॉश के इंतखाब में ये हमारी बहुत ही प्यारी प्रोडक्ट है, स्पेशली गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। आज हम पहाड़पुर में मौजूद थे और वहाँ पर बहुत सारे दुकानदारों ने ना गो पिंपल का ऑर्डर दिया है। गो पिंपल कहते यार ये गर्मियाँ जब भी आते हैं आपकी ये प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा बिकती है, इसके अंदर ऐसा क्या है कि पूरी गर्मियों में अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक्नी का फेस वॉश बिकता है तो वो गो पिंपल बिकता है। तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, एक तो बिल्कुल जो ऑयल को कंट्रोल कर लेगा आपके स्किन के ऊपर, ना वाइट हेड आते हैं, ना ब्लैक हेड्स आते हैं, ना वाइट हेड आते हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है यार गर्मी में ना। मैं आपको यकीन कीजिए, अगर आप क्रीमों से इरिटेटेड हैं और गर्मी में कहते हैं कि आप क्रीम आपसे नहीं लगाई जाती, आप गो पिंपल फेस वॉश, अपने स्किन के मुताबिक बात कर रहा हूँ, गो पिंपल फेस वॉश या प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश, केसन के दो जो फेस वॉश हैं, वैसे तो हमारे चार किस्म के फेस वॉश हैं, ग्लूटा वाइट फेस वॉश भी है, चारकोल स्क्रब फेस वॉश भी है, चार किस्म के फेस वॉश हैं, लेकिन इन दोनों में से आप मुंतखब कर लीजिए और फिर देखिए दिन में दो दफा अपने चेहरे को वॉश कीजिएगा, दिन में दो मरतबा अपने चेहरे को वॉश कीजिए। हमारे इन दो फेस वॉशेस से आपको मेरा ख्याल के क्रीम की जरूरत पड़ेगी अगर डेली आप वॉश करते हैं, ठीक है जनाब। गो पिंपल जो है इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जनाब, इतना प्यारा ये स्किन को बना देता है, इतना प्यारा ये स्किन को बनाएगा, आपके तमाम तर मसाइल का हल है, चाहे आपके स्किन के ऊपर वाइट हेड्स हैं, चाहे ब्लैक हेड्स हैं, ठीक है जनाब, चाहे आपकी स्किन के ऊपर जो है और प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जैसे कि बहुत ज्यादा ऑयल का और एक्नी का आ जाना। आखिर में हमारे साथ आ चुके हैं शबरा उस्ताद हैं, मुख्तसर सी बात करेंगे इनके साथ और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है?
0: क्या हाल है? अच्छे भी, ठीक ठाक। सुनो जनाब, मुहतरम
1: अल्लाह की मेहरबानी, बाहेंडे प्रोग्राम का ग्लोटा वाइट क्रीम और फेस वॉश, ग्लोटा वाइट यार सोप है बेहतरीन और मुअसर है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो सा मामा बेनी को और जितने सारे भाई सुन देते हैं सारा को अपील करे जो गर्मी है चीज बहुत शिद्दत ना जरूरत
0: है। शबरा उस्ताद एक मिनट माजरत के तुसा तुम्हारे इलाके जरा सारा सेल पॉइंट है शानी मोबाइल जोन
1: जी जी,
0: या इन अलावा बे भी दुकान तुम्हारे शहर बहुत सारे होसेन, ता ग्लूटा वाइट मेरे ख्याल कंप्लीट रेंज अगर तुसा देख दियो तो सिर्फ केसन दिए बाय के कंपनी लोग नजर ना दियो सी
1: नहीं कोनी बिल्कुल इतना है ही कौन बाकी बिना कोल फैजी में है ना जो हर बंदे ने ये टाइम इस्तेमाल क्रीमा की थी या ये की थी तो उसका जरा है ना फीडबैक अच्छा नहीं है और मजीद चेहरे खराब थे ना तो याद आता है आप सोच ईद आ जाए तक कहीं गिला भी नहीं की था तो इनशाला कहें मामा भी नहीं जा कहें भाई जा चेहरा अगर कुछ इन्हें क्रीमा को तंग आ चुके इनका बिल्कुल ग्लोटा वाइट क्रीम ते ग्लोटा वाइट जो फेस वॉश ते ये सोप इस्तेमाल करो अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह दूर ही थी वैसे ते इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो मैं अपील करे सा जो बिल्कुल घिनो अगर या न करें तो आन आन यार तो सर आप सकते जो शबीर उसका झूठ बोले तो मैं बिल्कुल खलील ताबे के नाल इस एग्री हूँ ये बिल्कुल इस्तेमाल को बाकी टाइम थोड़ा बाकी तारे सुना को अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम। कैसे हमारे साथ ये मौजूद रहते हैं शबरा उस्ताद और जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसकी वजह क्या है और ये जिम्मेदार है अपने इलाके के मशहूर हैं जनाब और अपने लोगों को कहते भी हैं और सेल पॉइंट भी इन्होंने हमारा केज के अंदर बनाया और देखें इतना अरसा हो गया है, डेढ़ दो साल का अरसा हो गया है, अगर कोई एक प्रोडक्ट भी रिजल्ट ना देती तो ये ना कॉल करते ना हमें बताते, बल्कि ये हर रोज़ आपको पता है कि हमारे शो में आते हैं क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी लोगों को बोला कि भाई ये केसन की चीज़ खरीदें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को फ़ायदा मिला है। मोहम्मद हमजा खेमटा भी हमारे साथ मौजूद हैं मूसा वाली पिपला से और कहते हैं आज की खूबसूरत बात यह है कि अपने आज को कल की फिक्र में जाया ना करें, गुजरा हुआ सबक और आने वाला उम्मीद है, सब सुनने वालों को सलाम जी। बहुत ही प्यारी बात
2: है
0: जी जनाब। और आलिया जो है हमें कल से कह रही हैं कि भाई मेरे लिए कलाम प्ले कर दें, तो आखिरी तीन मिनट हैं और ऐसा ना हो ایون وہ سوچیں کہ بھائی ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے پروگرام سنتے ہیں. یعنی ہو جناب ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی باتیں, میری باتیں, اور ساتھ میں یہ پیارا سا کلام بھی آپ بیک گراؤنڈ میں سنیں گے.

0: 보험이 좋다.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
0: 88.4 FM

ढोको और संदर्भ में डक और खंडवर प्रोग्राम हर हफ्ते पुष्पा लसु बजो न तर धूल लसु बजो पुरे प्रोग्राम मौज मस्ती ज्वन रंग अमन अमन के ज्वन दर तबे खंडख कारी और स्टडी प्रस मुते रखड़ी वी नुखफ के गई माँ जगह इंजीनियर महसूद दर तरवड़ी द खंडा द ढोको और संदर्भ में डक और खंडवर प्रोग्राम हर हफ्ते पुष्पा लसु बजो न तर धूल लसु बजो पुरे प्रोग्राम मौज मस्ती ज्वन रंग अमन अमन, अमन।

जी बिल्कुल प्रोग्राम शायद बिल्कुल मिसीना विच रकीब फाटक दे जेल चोकना वेलकम टू द मौज मस्ती शो मिटी भाई सलाम टू ऑल टीम वालेकुम सलाम डेर जी तमाम शुक्रिया और ये कहना सभी ये कहना सभी सभी विच उमामा सुमामा आम रहन अरमत डाली हुई आल तशना पोगाम के पढ़ते दिल त जमा बदन के विन वचे दिना और फातिमा जिरसाना डेर जी तमाम नन्ना शुक्रिया और रकीब फाटक विच दे जेल चको ना ये कहना पति दुनिया के सुख बपाते नशी वक्त मुख्तसर दे जुड़ना मोहम्मद है डेर जी तमाम शुक्रिया हम नशना दुनिया वजीर हाने वफात डाली हुई जमा रमान दे पूरा नकड़ो पूरा दे अच्छा अच्छा पूरा दे मशा अच्छा पूरा दे नशी दे टोल उमर अरमान न सही दो पूरा दे नशी दस्ता टोल उमर अरमान न कैसा दा सही दे डेर जी तमाम फातिमा वजीर साने प्रोग्राम से मिस कल बेहद मन ना शुक्रिया बिल्कुल प्रोग्राम से मिस जीना दे डेर जी तुरो गली दी खोलिश क्लश की उतर शामिल हुई वैसे आई एम बम बम फैशनी डेर जी तमाम शुक्रिया बम बम फैशनी और ये कहना छे सलामी डिवाइस संगे चंगे चल दे वैसे आई एम बम बम फैशनी जो हुआ एम छे मो डेर जी तमाम शुक्रिया और डेर जी तमाम बम बम फैशनी और वैसे चेरे फरान गोला उस प्ले क्या कहना फरान गोला उस बिल्कुल दर तपली की महा पकड़ फरान गोला वाला उस प्ले की और जैसे कहना छे कल कल टाइम चिकनी कहना से यूनिम दस यार दोस्त मलगिर हो चिकनी कहना आगा जैसे फरान गोल चिकनी कहना आदि मिर्ज दस ले कहना चीजी गिरे मुदाई और खम खा प्रोग्राम से मिर्ज सारा कल कल दस दाई पार्टिसिपेट हो की और दाई व्यू मसरूफ होना बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह आगे वाले हाँ टापे दर सारा प्ले की जिफा में खड़े था सदा से युवा देखा ना कैसा टापे दी अच्छा खैर इन्होंने ने प्ले कवे

हमारे इलाके में बहुत अच्छा ढेर शुक्रिया यो जहां सुपर डोमेल गुरु जी मजीर मिर्डी भाई बस खोद का पोते वेलकम टू मेक फ्लोर वर्तव्या वर्क आवे पखेर रोले महक ढेर सुमन्ना शुक्रिया दूसरा योमना खान ढेर सुमन्ना बेहद अमरना यो जहान मरना वैसे फार्मन हाटक दुआ गोल टांग से अच्छा फार्मन मन हाटक दुआ गोल टांग से अच्छा नूरजाई फगल उजाला मिनसहानी ओ सोनिया खान वो हम नाशना वो इल्मा हुमेमा सुमेमा अच्छा हुमेमा जुमामा और मनी वजीर मलिक जवेरिया आयशा वो आयशा जमा दे उमर सरासमा मारा था अच्छा अच्छा सर शहरी ले जमा द उमर सरा समा में रट शा गम प जड़ा लते रोमा सर डेर सुतमन शुक्रिया दिस इज मी किंग ऑफ बम बम सरला डेर सुतमन अच्छा डेर सुतमन जी मजीरा न माने के देखा ना मामा गलक्षण का ना दस खबर दी का ना दस मांगे का ना यो की लिखे ना चिदा सर शायदी मारा

जी बिल्कुल प्रोग्राम शुन सला चिकि मेसी नदी बिल्कुल ओदर तशमिल सुमर हालिस नदी चावल न पद किडो जों छ बीजेम वा तो होला किदले ओ बीजेम वा जों छ ओ सिगना छ बीजेम सवे गना बीजेम वा लश्कर सरा जो के गना जी बिल्कुल दन में ने बीजेम छ किमने गना में ने बीजेम शुतर तर दरमी इंशाल्लाह खुश होमशे गना नम खुश न बिल्कुल रतवे के वे छ ना खुश होमशे واشه جي منانو بالكل بلا شي سايدو بيو بلا شي انا مغشر بيار طبيعي